0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुम नगरपालिका 5 सोलु

नमस्कार। पूर्वी नेपाल के पहले सामुदायिक रेडियो सुन एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज बाट देश का विभिन्न भाग www.sunfm.com संसार भर एक साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 7 बजे सोलो समाचार लिएर आइपुगे म अंशु कार्की। सोलो समाचार के शुरूआत में मुख्य खबर का शीर्षक सुनकुमा नेपाल कांग्रेस प्रदेश सभा ख को सभापति में कर्मा शेर्पा प्रदेश सभा ख को सभापति में धनजन राय निर्वाचित सुनकुम्बू को पन्द्रौ महाधिवेशन अंतर्गत प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा को प्रतिनिधि छनौट संपन्न सगरमाथा प्रदर्शन नियंत्रण समिति का अध्यक्ष में लामाकाजी शेर्पा सुरक्षा को मार्ग देशान को चेतला आधारित विद्यालय बंद विद्यार्थी को पढ़ाई प्रभावित सुनकुमा मैट गुजरे को एक लाख भन्दा बढ़ी का खाद्य वस्तु नष्ट शरद ऋतु में 69 देश का 640 आरोह हिमाल आरोहण अनुमति हिमदुन हिम पहरो में जान गुमाने को संख्या 15 पुग्यो। बेपत्ता को खोज तथा उद्धार तथा थप प्रभावशाली बनाने सांसद मिंगमा शेर्पा को आग्रह कोशीमा मुख्यमंत्री सम्मेलन को नीति परिवर्तन निर्वाचन आयोग में दो सदस्य नियुक्त निलंबन का कारण नेपाल पहिलो पटक साफ चैंपियनशिप बाहरियो। अब समाचार विस्तार में सोलुखुम्बू को सोतान गांवपालिका वडा नंबर 2 स्थित चेतला आधारित विद्यालय में जंक फूड खाना निषेध निर्णय लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि विद्यालय को पठन पाठन तथा संपूर्ण कामकाज ठप्प बनेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ को निर्णय प्रति असंतुष्ट जनाउँदै एक स्थानीय व्यक्ति ने प्रधानाध्यापक र शिक्षक माथि अभद्र व्यवहार कुटपीट को प्रयास करेपछि सुरक्षा को कारण देखाउँदै विद्यालय बन्द गरिएको हो। प्राप्त विवरण अनुसार गांवपालिका को शैक्षिक श्वेत पत्र को विधा नंबर 12 आधार मान्दै असो 14 गते बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघ को संयुक्त बैठक ले विद्यालय परिसर भित्र जंक फूड प्रयोग तथा बिक्री में प्रतिबंध लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय प्रति विद्यालय छात्रवास संचालन गर्दै आएका तथा शिक्षक अभिभावक संघ का सदस्य समेत रहेका स्थानीय पेम्बा शेर्पा क्रोशित बन्नु भएको थियो। बैठक सकेपछि नजिकैको होटलमा पुगेका विद्यालय का प्रधानाध्यापक वासु रायमाथि शेर्पाले नाली गलौज गर्दै हातपात को बगास गरेको आरोप लागेको छ। साथै वहां छात्रावास में बस्दै आएका 10 जना विद्यार्थी शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति का पदाधिकारी समेत धम्की दिएको र अभद्र व्यवहार गरेको विद्यालय प्रशासन ने जनाएको छ। घटनापछि विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी को बैठक में पूर्ण सुरक्षा को प्रत्याभूति न भएसम्म पठन पाठन संचालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। सहायक प्रधानाध्यापक समक बाबु बस्नेत द्वारा जारी विज्ञप्ति में आरोपी शेर्पालाई सम्बन्धित निकायले उपस्थित गराई कानूनी कार्यवाही नगरेसम्म र विद्यालयमा भ्रमयुक्त वातावरण भयमुक्त वातावरण सिर्जना नभएसम्मका लागि विद्यालय बन्द रहने उल्लेख गरिएको छ। उक्त घटना सम्बन्धी वडा कार्यालय र पावर स्थित प्रहरी चौकीलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ। वडा कार्यालयमा आयोजना गरेको सलफलमा आरोपी शेर्पालाई बोलाइए पनि वहाँ सम्पर्कमा आएको र प्रहरी प्रशासन को सहयोग में विषयलाई तार्किक विषय में निष्कर्ष में पुर्याउने विषय भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी को पठन पाठन प्रभावित बनेको छ।

अनेक डाटा जिन पास डाटा कारी को मापदंड अनुसार उच्च गुणस्तर को बनाए हुआ लामो समय समर्पित गाड़ी को कार्यक्षमता भी बढ़ाद साथ ही डाटा जिन पास खरीद करना 2082900 और 2082905 कंपनी कोड भाई को मात्र खरीद करना जानकारी कराई।

हजुरहरुपनी टाटा का जेन्युइन पास बढ़ाई करी आफ्नो गाड़ी को आयु बढ़ाउनुहोस्, मरमत खर्च घटाए आमदानी बढ़ाउनुहोस्। थप जानकारी का लागि सिप्रोदी अटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड।

0: Istana, sana sana. Anggap mana di bawah aku. Kutu perlu orang kau jalan atau buksir ini. Mana? Mana yang tertutup?
1: Soita, kini orang kau ke khas khusus kurang desa. Kini bawaan atau kini bawaan ini? Mana yang suni sakit? Yerah buksa buksi bannya mudah ina. Yo tak samajik abisus matra ho. Mujur, kasihlah buksi ko aruplanu, kutnu, pitnu, pira dino wa. Gali bici ti gawnu mudah ina. Tisto kare samajik aparad ho. Buksi ko aruplanu, kutpit gawne, tatha pira dino le 10% kait. Rob 50,000 dekhi 1,00,000 rupiah sama jariwana huncha. Buksi arup lagaira, kutpit, angga bangga gawne lai. 10% kait sengai, jan marle udjak antargat. Thap sajai pani huncha. Yo kura tini harule afna abibaba kharulai pani bhanna hai.
2: Huncha bhai.
3: बुक्सी अंधविश्वास हो बुक्सी विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि गरौं समाजलाई सभ्य बनाऊ
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
0: नमस्ते डाक्टर सर
5: नमस्ते बस्नुस् न बस्नुस् त के हो
0: इनमेस न डाक्टर साहब मेरो बच्चा राति राम्रोसँग निरोन पनि सक्दैन बेला बेला उठ्छ गर्छ टाउको दुख्यो भन्छ के गर्नु होला
5: Ini udang tu cukup toler,
0: oh.
5: Ini kena kau tiup kanzu.
0: Kena tak kanzu? Tapi phone ya iPad di muka sah. Macam kami mana?
5: Yesus, orang itu solusinya ni ya. Bal-bali kalai phone ya iPad di rumah kena kau dah. Umur ni kena kau suami kena tahu dulu. Isteri umur kau swasta mana? Diri kalian asal tu dia. Bisnes swasta sangat dengan tu, ekbar sahaja mungkin kau bal-bali kalai isteri dia pun mungkin dua orang itu sah. अभी देखिए चार वर्ष का बाल वाली का लाइक दोनी एक घंटा वरना बड़ी स्क्रीन देखना था स्वास्थ्य में असर पूछा बने तो सर
0: ओहो तू तो थाई बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब
5: स्क्रीन के कारण उसे मुंह में लगने दौर लगने तोल बनने वाले और ताऊ तो उसकी कारण बनी ये नहीं हो इसलिए पसी माइग्रेन उनको सामाजिक रूप में हासिल करने ज्ञान सीखा साथ ही शारीरिक सृजनात्मक विकास में समेत अवरोध पूर्ण सकता
0: ओहो फोन ले तो बहुत सब बैठ हो उम्र रहेछ है डाक्टर साहब
5: हो नि बालबालिकाको 3 वर्षसम्मको उमेर भनेको अरूले गरेको कुराकानी सुन्ने बोल्न सुरु गर्ने सोच्ने योजना बनाउन सिक्ने अन्तर्क्रिया गर्ने अनुहारको भाव पढ्ने र काम सिक्ने बेला हो मोबाइलको अधिक प्रयोगले यस्ता कुरामा असर पार्छ
6: त्यसैले आफ्ना बालबालिकालाई स्मार्टफोन ट्याब र टेलिभिजनको मलबाट जोगाऊ

पंचानब्बे अड़सठी तीन सौ छी सतहत्तर चौतीस अध्यक्ष पासांग शेर्पा केरे मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह माइक्रो हेड से

0: attention. CBS the studio time.
1: Please dear, please go clean budget.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलह दूध को मदगर पालिका पांच सोलह कुंभ

0: का सबको सरोकार आज का बाल बालिका भूलि का सदनहार
1: बाल बालिका मधि होने कने दुर्व्यवहार कानून ने दंडनीय तसर्थ कसले बाल बालिका दुर्व्यवहार न करो उन्हीं को अधिकार सुनिश्चित कर आफ्नो तर्फबाट सहयोग करो अनिवार्य रूप में विद्यालय पठाओ यह बाल मनोभावना बुझे शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप में सहभागी कराओ
0: कहीं कहीं बाल बालिका मधि दुर्व्यवहार भैसेदेखिमा सहेर न बसाई संबंधित निकाय में उजुरी करो बाल बालिका को सुरक्षा तथा संरक्षण सबको जिम्मेवारी असल सभ्य नागरिक को

0: En halogen, brandal kladderij is een balie. Moka fijn, joli lijkt goed, dat is een balie.
1: यू चार पर्व में यूरोपेंस प्रस्तुत करते हैं रंगीन चक्कर बरसीन से उपहार तो 50,000 को यूरोपेंस को खरीद पाऊं उस लकी जो कूपन यानी पाउंड उस 3% एसी एक चार डबल डोर फ्रीज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक यानी बम्पर प्राइस में पाउंड उस एक जोड़ी को लाने ही बाली टू यूरोपेंस घर मत रहना रंजाउन उस सपना बनी
2: पूरे बचत पूरे कायदा बीमा काचन फायदे फायदा बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन बीमा गरी निश्चिन्त बनाऊ न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड रामसहा पथ काठमाडौँ साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान
3: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुविशु सुरक्षा
2: Wi-Fi 6 in a time was high-speed trusted on internet.
3: Sathai, Subisu Surakshale, Tapane Raksha online browsing na Surakshi.
2: Hanikarak site or Surakshit content on a sabit instant block with us.
3: Subisu, Chito Pani, Surakshit Pani. Hab jankari tatha booking ka lagi.
2: Sumaye, Bayalis Purpose at. And in the Muslim, Bayalis Purpose at.

परिवर्तन तबा हमने विषम न्यंग रंगजे रंगन सुधार लबा हम बोला न्यंग लक्ष्मीक न्यंग समाज न्यंग टीम न्यंग जिला न्यंग देश हरणले परिवर्तन थे प्रिय रो मागदे तिनी यदि न्यंग हृदय ल परिवर्तन तबदा खाचम बोला येशु ख्रिस्ती चार तजी जन्मे की बता लानन खाँचो मला एडेन नाई वास्तवरी येशु दा जब सेम नांगजे न सेव मला विश्वास लब मला अनि ग्रहण लब मला विषम ठे न्याला रिदेरी क्यों हाब मला अनि ठेला उपस्थित जे न्याला रिदे परिवर्तन तब मला न्यांग खराब तबला व्यक्ति चब तब हम मला पब रक्षी जे नांग बलमी ठेला छुटकारा तब हम मला आश्यम सप्त जे पांग बामी शुद्ध तब अनि परिवर्तन तब हम मला नम्र त बोली दयालु अनि ठेला जीवन दी तब हम मला अनि आको बाद रांगनी दा तिनी रांगनी ला अगाडी नाई चो बाद अंगजे न्यांजे विचार लाई तस्य विषम प्रभु येशु जी न्यांगदा मायाला शिव मला अनि अर्को बात रंगी द चोरी मोबमला येशु जे होते सुंगिन बहिंजे निकु देमस मिन लबनी ठ्याम क्याम जे यारजी खास गरी थे येशु द ग्रहण लबरी पंक्षी हावला मोबला थेला सेमला ताम रिदल ताम येशु जे कोशियो जी अनि अर्को फ्लारी थे जे एरोंगली सुंग मामला जो थंगमान शांदो हालजे लाभ हम्मा अनि येशु ख्रिस्ट बाहे शांदो हालजे नो लाभा अहम बामला परमेश्वर लमाया न्यंग बीजरी एरोंगले प्रकरता जे की थे जे रंगला कोर की जे मुगला चानो जो संसारी पुहा जे ताकि चाक्यां जे न्यंग सोबा हम गए परमेश्वर लमाया चोरी मुला की न्यंग जे माया लबला हिन की थे जे न्यंग ला माया लशी बला हिन्ना अनि न्यंग ला पाप ला उदार छुटकारा लबदा रंग ला चा पुई हासी जी योहन्ना चार अध्याय ला नौ हिंजे दस पदरी एरों ले प्रिबल मुला तरे अनंत जीवन जो हिन्ना की थेनी कदे जे एक और की जे सत्य परमेश्वर हिन्ना अनि रंग जे पुई हावला येशु दा मसे गए प्रिय रोमा गदे प्रभु येशु ला माया कति आचम मलमुला थे जे यंग दा रंग ला जीवन अर्पण लसियो जी यदि यंग जे यंग ला जीवन परिवर्तन लसी थे दा विश्वास लजी विषम थे रंग दा आशीष दंशला मुला तिमीले के दंगडी समय जेगा दा विस्तार नु बेदला जे प्रिय रो मांगा दे तिनी लपचंदे परमेश्वर जे रंगी दा प्रशस्त आशीष तुम शिव गए

0: रोगादे रंगसे दन्दे बर्खर न्यान्सुबन मोला मार्ग दर्शन गेदाङ रोगादे तिनीला चु गेदाङ रंगनीदा खरङ नन्दी तुदे चु गेदाङ न्यान्छे रंगनीदा तिकै खुल्दुले ताबा मुसाम रंगनीला पत्रला नुन्छे आस नसिती बमुला रंगनीला सल्ला कुई खला कुई खासियोला विवाह रंगनीदा आनन्द देन बमुला तुदे रंगनीला प्रार्थना लदो विषय दुगो मुला विषम रंगनीसे कुई खासियोको विवाह मन्ना देन बमुला रंगनीदा मन्ना चु गेदाङला ठेगाना चुरङ बमुला
1: कार्यक्रम मार्गदर्शन जीपीओ नंबर 8975 ईपीसी 2561 काठमाडौं नेपाल ईमेल आईडी twrnepal@yahoo.com एसएमएस लागेरे 9847035679 9847035679
0: लसो रोदुगु तिनी चुकेदाङ यासेङनी फेसी निबन मला दोषी खबा चुनुन दुरी भन्ने लङ्गन छङले रुप्त बढी खलाब विवाह बाच्छ लवन नै

0: 苏子妈，苏子妈，
1: 不觉的疲
0: ये जो तुम्हारे को दस मिनट समय से पंतरा घूम को क्लॉक फुट से भी चार छह बने ये तो साथ लागी अपांग बाल अस्पताल देखा वोडेस अपने तीन दो एसआरडीसी काफी पनीता नगरपाली का इधर है प्रादेशिक कार्यालय इटाहरी उपभोक्ता दोगर पानी का उड़ाने में सूरज सुनसुन में तुरंत संपर्क करना सक
2: जानकारी का लागी संपर्क नंबर 9852555786 अंक 9853557682

0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sanche Surya Singh Studio Time
0: It's 7 p.m.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु

0: सुनत मेरे कपड़ा पैकिंग कर दौ तो सामजी को मिसेस लाई कैंसर उपचार करा इंडिया संगे लिएर जान पड़े
1: अनि सुनिता अब कैंसर को उपचार सेम सी कैंसर इंस्टीट्यूट भरतपुर में नहीं हो पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएंट ट्यूबिंग 60 काउंस र हाइपर आर्क लगायत का अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग करी मस्तिष्क में रहकर ट्यूमर फोक्सो को कैंसर स्तन कैंसर घाटी तथा टाउको संबंधी कैंसर पेट तथा कलेजो संबंधी कैंसर पाठेघर को मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय संबंधी कैंसर तथा अन्य कैंसर को उपचार हुन्छ कैंसर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएशन को माध्यम पूर्ण रूप में निको होने गरी पनि उपचार गरिन्छ सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्क में उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने कैंसर पीड़ितहरूका लागि 1,00,000 सम्मको छूटको व्यवस्था पनि छ
0: यस्तो सुविधा रहेछ म अब कैंसर उपचार गराउन सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट में नहीं लिएर जान्छु कैंसर विरुद्ध कैंसर को किरण सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट
2: फोन 056-494-3333 494-555

0: सोलो एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: 10 PM रात को 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोनू दूध को नगर पालिका 5 सोलू